देसी पे आज का शो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ जो मेरी को होस्ट है वो मेरी बेटी है जिसका नाम है पीहू शर्मा। और पीहू मेरे एसीटी देसी के सफर में मेरे साथ शुरू से रही है। मुझे अभी भी याद है जब हम 2019 में आए थे और पहला शो किया था, तो तब आई थिंक हॉलीडेज थे जुलाई में, और रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे साथ बस में गई थी और हमने एक साथ बैठ कर रिकॉर्डिंग किया था। तो थोड़ा टाइम अलग था जब वो 5 साल की थी और बहुत मुश्किल था मेरे लिए मैनेज करना, रिकॉर्डिंग करना उसके साथ एक रिकॉर्डिंग रूम में जहाँ पे थोड़ी सी आवाज़ भी रिकॉर्डर पे कैच हो जाती थी। तो आज का शो स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हम कुछ पुरानी यादों के बारे में बात करने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं कि कैसे ये जो साल हमने इतने निकाले हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ी रह गई इतने साल तक, स्पेशली मेरे नहीं पीयू के साथ, और पीयू उसके बारे में बात करेगी और मैं अपना रोल जो हमेशा करता हूँ अदा आज भी करूँगा क्योंकि मैं हूँ आपका अपना देसी आरजे विकास और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैमरा ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, किमचो, और जाइएगा नहीं, बस मैं यू गया।

0: तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि आज शो पे मैं लेके आया हूँ पीयू को, जो मेरे साथ मेरे पार्टनर इन क्राइम है। बहुत सारी चीजें हमने साथ में की हैं, हम शॉर्ट फिल्म भी करते रहते हैं साथ में, हम पिकअप बुक विद पीयू भी किया है, और ऐसी छोटी मोटी चीजें जो हमको एंगेज रखती हैं और क्रिएटिवली स्टिमुलेट करती हैं वो हम करते रहते हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है वो पीहू के साथ में कर रहा हूँ, और पीहू अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देगी जिसके बाद हम बात करेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं।
1: हेलो, मैं पीहू हूँ जैसे पापा ने अभी बोला है, और मैं 12 साल की हूँ, और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार मेरे पापा के साथ को होस्ट करूंगी उनके रेडियो पे।
0: वेरी गुड। तो पीयू, बात करते हैं कुछ आज, और ये जो आज का जो शो होगा वो इंटरलैप्स होगा बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और कुछ यादें जो तुम्हारे साथ हैं, यू नो बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ जुड़ जाती हैं, और कुछ चीजें याद रह जाती हैं, कुछ चीजें नहीं भी याद रहती। जैसे मुझे अभी भी याद है कुछ ऐसी चीजें जो मेरे बचपन की हैं, जैसे मुझे पतंगे उड़ाना बहुत पसंद था, और कुछ गाने जो उन टाइम पे उस टाइम पे आया करते थे जब मैं पतंग उड़ाया करता था, कभी कभी जब वो मैं आजकल सुनता हूँ तो मुझे वो टाइम याद आता है कि अरे यार ये गाना जब मैं पतंग उड़ा रहा था उस टाइम पे जब मैं 8 या 10 साल का था। तो ऐसी चीजें होती है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो एक चीज जो हम पकड़ के चले हैं, बाकी तो बहुत सारी चीजें होंगी, जो एक चीज है जो बचपन में एज लॉन्ग एज तुमको रिमेम्बर हो, ये जब 3, 4, 5 जब भी, जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: वेल, जब हम इधर आए थे, मतलब कोई गाने थे 2010s एंड 14 जो अभी भी कभी कभी फिर से ट्रेंड हो रहे हैं, फिर से चल रहे हैं। मतलब तब जब मैं आई थी 5 साल की थी, और मुझे याद है जब पापा रेडियो में काम मतलब शुरू किया था, और मैं भी जाती थी क्योंकि मम्मा काम पे थी, और मैं मेरे पापा के साथ चले जाती थी, सुनती थी। और मुझे याद है बहुत, मतलब कभी कभी चुप चुप के खाना खाती थी, आवाज नहीं बनाना था, पापा बोलते थे आवाज मत बनाओ, आ जाएगा रिकॉर्डिंग में, तो फिर वो सब याद आती है कभी कभी। और अभी मैं बात कर रही हूँ रेडियो पे, तो वो बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है।
0: बट चलो ये तो अच्छी बात है, और मुझे भी वो टाइम याद है जब रिकॉर्डिंग करने हम 2-3 बार आई थिंक साथ में गए थे, और जैसे मैंने बताया कि जुलाई का टाइम होता था और जुलाई के टाइम में यू नो हॉलीडेज होते थे, और हॉलीडे में यहाँ से जाना ग्रिफिन सेंटर में और 2XX के स्टूडियो में बैठ के वो प्री रिकॉर्डिंग करना और जस्ट टू कीप यू एंगेज इट सेल्फ वॉज अ टास्क फॉर मी, एंड जस्ट टू ऑल्सो गेट द टास्क डन फॉर द रेडियो शो वॉज ऑल्सो अ टास्क, बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टाइम। बट जब हम इंडिया में थे, और मुझे याद है कि जब छोटे होते एक बहुत मूवी जिसका बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारे बच्चों के ऊपर और बच्चों के साथ उनके माँ बाप के ऊपर भी इम्प्रेशन है, वो है फ्रोजन मूवी एल्सा और आना। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा है कि एल्सा और आना की कुछ यादें हैं?
1: आपको तो पता होगा जब मैं 5 साल की थी मैं बहुत मतलब वो मूवी से ऑब्सेस्ड हो गई थी, 10-15 बार देखा होगा, बार बार देखा है, गाना गाती रहती थी। एल्सा जो वो क्वीन होती है, बड़ी बहन होती है, वो मेरी फेवरेट थी। लेकिन फिर मैंने सोचा एक छोटी सी आना भी है, मेरे आना क्यों नहीं, मुझे भी छोटी बहन चाहिए। तो फिर मैंने ये मेरे मम्मा पापा को बोला कि मुझे भी एक बहन चाहिए, मेरे क्यों नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ इधर। तो फिर हाँ, वो और अभी मेरी बहन 5 साल की है, और अभी वो भी फ्रोजन से मैं ऑब्सेस्ड हूँ। और फिर जब मैंने बोला था कि मुझे आना चाहिए, अभी वो मुझे बोलती है कि वो एल्सा है। तो फिर लगता है कि प्लान फ्लॉप ही हो गया।
0: प्लान फ्लॉप हुआ या नहीं हुआ, इससे ये पता चलता है कि एल्सा के साथ आना कौन लेके आया और किसने उसको विजुलाइज किया था और कौन उसको लेके आया। यू नो क्या ऐसी चीज है फ्रोजन में, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूँ कि इतने साल हो गए हैं और फ्रोजन मूवी के आए हुए, और जैसे कि तुमने बताया कि यू नो पीपल आर ऑब्सेस्ड, बच्चे ऑब्सेस्ड हैं, क्या रीजन है कि बच्चे ऑब्सेस्ड हैं?
1: अभी भी मैं सोच सोचती हूँ मैं क्यों ऑब्सेस थी. अभी तो अभी रिफ्लेक्ट करूंगी कि आई थिंक द रीजन व्हाई इतने बच्चे फ्रोजन इतने पहचानते हैं, इतना इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें मैजिक होता है. मतलब लड़कियां होते हैं, गाने गाने होते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस होते हैं, और मतलब सब इस जस्ट वही वही सिंपल चीजें पे वो बच्चे देखते हैं. ओह माय गॉड, ये कितनी अच्छी सी प्रिंसेस है, इसके कितने पावर्स है, मुझे भी चाहिए, इसके ड्रेस इतना अच्छा है, स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है. और अच्छी है क्योंकि सिंपल है, एडवेंचर पे जाते हैं एल्सा को ढूंढने के लिए, और मतलब यही इसलिए वो बच्चे इतने पसंद करते फ्रोजन को.
0: तो बेसिकली सुपर नेचुरल थीम है, प्रिंसेस है और अच्छे कपड़े हैं, बहुत सारा म्यूजिक है और मिस्टीरियस थीम है. तो ये देर यू गो, नाउ यू हैव अ रेसिपी ऑफ मेकिंग अ गुड चिल्ड्रन मूवी. या आप कोई एपिसोड बनाना चाहते हैं तो आप भी इसके ऊपर कर सकते हैं. बने रहिए मेरे साथ क्योंकि इसके बारे में और पीयू की कुछ और यादों के बारे में हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और मेरे साथ आज है पीयू जो बात कर रही है कुछ ऐसी बचपन की यादों के बारे में जो खास है और जो हमारे साथ हमेशा रहती है. आपकी भी कुछ यादें हो, आपकी भी कुछ इंस्टेंसेस हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके मुझ तक पहुंच सकते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए मुझ तक पहुंच सकते हैं. दोनों का हैंडल है ACT देसी. कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं वापस आया.

0: साथ मेरे साथ है मेरी प्यारी बड़ी डॉटर पीयू, जो मेरे साथ बहुत सारे काम करती है और बहुत सारे चीज़ें हम शेयर करते हैं इन द सेंस ऑफ क्रिएटिविटी और कैसे हम अपने आप को बिजी रखते हैं। मैं जो अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट करूं अपनी यादों के ऊपर, तो मैं इतना बोलूंगा कि मैंने पीयू को जितना ऑब्जर्व किया है, जितनी चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व किया है, वो इतना देखा कि वो कमिटमेंट जो है वो चीज़ों के, वो जो मेटिकुलसली चीज़ें करना है और किसी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो प्रॉपरली जानना है उसको और अच्छे से करना है, क्वेश्चन करते रहना है। और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग दैट वी शुड ऑलवेज टेल आर किड्स, नॉट टीच आर किड्स, बट टेल आर किड्स टू बी इंक्विजिटिव। और मुझे मेरी जो यादें, शायद पीयू को याद हो या ना हो, कि जब मैं बैक इन इंडिया क्विज करवाता था, ट्रिविया क्विज कराता था और मैं क्विजेस के क्वेश्चन बनाता था, तो मैं यू नो घर में भी हम क्विज खेलते थे और हमेशा मैं यही बोलता था कि यू नो जानने की जो जिज्ञासा, जो इनक्विजिटिवनेस है, वो हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि पीयू हैज़ गॉटन दैट, और नॉट जस्ट पीयू बट मैं वियोना को भी देख रहा हूँ, शी इज़ आल्सो डेवलपिंग एंड इट्स अ गुड थिंग। एंड टू आस्क क्वेश्चंस एंड यू नो क्वेश्चंस कैन नेवर बी गुड और बैड, क्वेश्चंस शुड ऑलवेज बी यू नो अबाउट नोइंग समथिंग। चलो वापस जाते हैं फ्रोजन के ऊपर। फ्रोजन एक ऐसा टॉपिक है जो इतने साल हो गए हैं अभी तक चलता आ रहा है और अभी भी फ्रोजन 1, 2 आई थिंक 3 भी आ रही है। आज के टाइम में जब वियोना टीवी पे फ्रोजन देखती है या फ्रोजन के गाने गाती है, तो तुमको ऐसा कोई डिफरेंस लगता है? डू यू फाइंड एनीथिंग डिफरेंट और स्पेसिफिकली सिमिलर to what you used to feel when you used to watch Frozen, या कुछ ऐसा लगता है? क्या एक ऐसी चीज है जो सिमिलर है जो तुमको लगती थी और जो बबल्स को या पी वियोना को लगती है, और क्या ऐसी चीज है जो तुमको पता नहीं था जो तुमने अब थ्रू वियोना ऑब्जर्व किया कि अरे फ्रोजन में ये भी था?
1: Well, जो सब जनरली जो सब फैंस होते हैं वो फ्रोजन के लड़कियां होते हैं, और मतलब यू कैन रिलेट टू व्हाई दे लाइक फ्रोजन। जैसे मैं अभी भी देखती हूँ बबल्स को, वो देखती रहती है लेकिन वो एनालाइज करती है, मतलब जो भी, जब वो दूसरी बार देखती है कुछ और पता चलता है, क्योंकि जब उसने फ्रोजन 1 बहुत सारे बार देखी है और फिर 2 भी बहुत सारी देखी है, क्योंकि उसको मतलब मैं भी बहुत बार देखती थी, क्योंकि मतलब एनालाइज कुछ अलग मिलता है जब आप देखते हो, तो फिर उसमें छोटे छोटे मोमेंट्स जो आपने पहली बार नहीं देखा वो दोबारा देखते हो और फिर ओ ये हुआ था इसलिए ये हुआ था, और मतलब थोड़ा पैच अप कर लेता है।
0: वो तो लेयरिंग होती है, बट मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सी ऐसी चीज है जो सिमिलर है, जो उसको भी अच्छी लगती है और तुमको भी अपने टाइम में अच्छी लगती थी जब तुम सेम उम्र की थी, और कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व की है, और अगर ऐसी कुछ ऑब्जर्व नहीं की है तो भी ठीक है, और अगर कुछ किया है तो बताओ उसके बारे में।
1: कुछ सिमिलर जो है वो हम दोनों एल्सा को बहुत प्यार करते थे और वो अभी भी करती है, क्योंकि उसके पावर्स है, वो सुंदर भी लगती है, वो ड्रेस एकदम ब्रेव सी है, और मतलब हमेशा वो एडवेंचर करती रहती है, और पूरा जो मूवी है उसके ही ऊपर रिवॉल्व होता रहता है, तो नेचुरली मेन कैरेक्टर पे ही हम दोनों को प्यार हो गया था। तो फिर वो एक सिमिलर है, वो गाना भी बहुत अच्छे गाती है, वो गाने कैची होते हैं, हम दोनों मैं देखती हूँ अभी भी जो बबल्स
0: लेट इट गो वाला गाना,
1: हाँ लेट इट गो मैं भी बहुत गाती थी, और अभी बबल्स वियोना भी बहुत गाती है, तो फिर जो मतलब छोटी छोटी चीजें जो सिमिलर है जो मेनली अराउंड एल्सा।
0: अच्छा, एल्सा इज अ कॉमन थीम। और हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है, लेट इट गो गाने के बारे में हमने बात की है, लेट इट गो के अंदर ही अपना एक बहुत अच्छी एक थीम है। आई थिंक आई वुड से कि ऑल्दो मैंने डायरेक्टली फ्रोजन को वॉच नहीं किया, बट थ्रू बोथ ऑफ दीज किड्स आई हैव वॉच्ड इट मेनी अ टाइम्स, और मैंने उस मूवी को कभी कभी पूरा भी देख लिया बैठे हुए, क्योंकि साइड में बैठे अपना काम कर रहे हैं तो मूवी चल रही है तो देख रहे हैं, गाना आ रहा है तो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, स्टोरी लाइन देख रहे हैं। स्टोरी लाइन ऑल्सो अच्छी है क्योंकि आई थिंक इट्स इट्स वेरी इवॉल्व स्टोरी, और इसमें कैसे पावर्स होती हैं, जैसे हम हमें इंसान को पावर्स होती हैं बहुत सारी और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, गुस्सा, प्यार, यू नो ऑल दोज थिंग्स दैट वी कैन यूज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस दैट कैन बिकम पावर, एंड देन दोज पावर्स इफ नॉट यूज एट द राइट टाइम एंड इन द राइट वे कैन ऑल्सो बिकम योर कर्स, जैसे हम एल्सा को देखते हैं और वो लेट इट गो का यू नो वो थीम उसके ऊपर जाता है। खैर इन्हीं पावर्स के बारे में हम और बात करेंगे कि कौन कौन सी पावर्स हम इंसान अपने चाहते हैं या नहीं चाहते। पीयू से मैं पूछूंगा इनके बारे में, आप कहीं आइए यानी ये गाना सुनिए और वापस आइए, तब तक मैं पीयू से पूछता हूँ कि उसको कौन सी पावर्स पसंद है। आप हैं मेरे साथ, मैं हूँ आपका अपना देसी आरजे विकास।

0: पहले मैंने बात की थी कि पावर्स के बारे में, और अब मैं पीयू से बात करना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी पावर्स है, जैसे तुमने बोला कि एक कॉमन थ्रेड जो तुम्हारे और वियोना के बीच में है वो ये है कि एल्सा जिसके पास पावर्स है, एल्सा जो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। अगर मैं तुमको बोलूं, यू नो, इफ आई आस्क यू टुडे व्हाट पावर, व्हाट्स दैट वन पावर दैट यू वुड रियली वांट, व्हिच पावर वुड इट बी?
1: वेल, अभी मैं बड़ी बहन बन गई हूँ, सो आई नो व्हाट इट इज लाइक टू हैंडल अनदर वर्जन ऑफ मी, जो व्हाट माय पेरेंट्स वेंट थ्रू एंड नाउ आई एम गोइंग थ्रू दैट। बट इफ देयर वाज वन पावर आई कुड हैव, इट वुड बी, I know I'm not scary, that's why my sister doesn't listen to me, but maybe a power that would be useful would be like the ability to
0: make scare?
1: No, but make others listen to you when you really need them to listen to you, because she doesn't listen to me even when I am telling her to do the right thing. So, wo kabhi kabhi agar wo power mil jaye na to fir it will be useful in life.
0: Power of persuasion, that is, to persuade someone. That's the power that everyone wants. But the problem with that is that you have to have capability of understanding that not all people can be persuaded. Mm-hmm. The only person that you can persuade is yourself to the fullest. But yes, definitely you can influence a few to move in the right direction, and you can only influence them in a positive way. But I would say ki iske alawa ek tangible power, persuasion is so like psychological power hai ki kisi ko persuade karna, but ek tangible power agar chahiye to wo kya hoga, ek magic, agar main tumko bolu ki I grant you a wish today Pihu, what is that one magic power that you want and why? I'm sure you know what you want. Just let it be, like tell and let it go, let it out.
1: The power to stop time, is that magical?
0: Well, if you stop time, that everything will be stopped. But do you want to stop time? Because everything
1: is... Maybe like go back into the past to fix something, or go to the future to fix something that might happen.
0: Okay, so basically turn back time, or turn time forward.
1: Mm-hmm.
0: Right, and what is that one thing that you would like to fix in the past, if I may ask?
1: Well, not generally anything, but agar kuch ho jaye that I want to repair and make it better, then time traveling would be useful. To main piche ja sakti hu, wo theek kar sakti hu, aur main past jo main apne aap ko bol sakti hu past mein ki ye mat karo aur ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो फिर हाँ वही वजह से ये पावर यूजफुल होगा लाइफ में।
0: बट मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, टाइम एंड दी टाइमलाइन जिसको हम कहते हैं, दैट्स वेरी रिलेटिव इन द सेंस कि अगर जो पीछे कुछ हुआ है उसकी वजह से आज जो हम कर रहे हैं वो उसके डिपेंडेंट होता है। सो इफ यू चेंज सर्टेन थिंग्स इन द पास्ट, then it might be a different outcome altogether what you are doing right now. So are you open for that consequences as well? This topic has gone way, way weird from where we had started, from Elsa to time travel. So stick with us. So that's what happened when two maverick like Pihu and Papa comes together and do something like this. Anyway, go on. So are you ready for the consequences, Pihu?
1: मैं पहले सोचूंगी करने के बारे। इट्स नॉट लाइक आई रियली नीड दैट पावर, बट सिंस यू आस्क्ड आई सेड दैट
0: ओके, फेयर इनफ। आई मीन इट इज समथिंग दैट आई हैव पुट यू ऑन स्पॉट एंड आस्क्ड यू इमीडिएटली, एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू हैवंट थॉट थ्रू। सो आई एम श्योर इफ आई आस्क यू अगेन देयर विल बी अ डिफरेंट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज बिकॉज एकदम से कोई पूछ लेता है तो यू सडनली डोंट थिंक टू मच एंड देन यू जस्ट से व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। आपके पास भी अगर कोई ऐसा पावर जो आपको चाहिए, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बताइए कौन सी पावर ऐसी है जो आप चाहते हैं आपके पास हो, और आप उस पावर को कैसे यूज करेंगे।

0: तो अब हम आ गए हैं इस एपिसोड के एंड की तरफ, और हम बात कर रहे थे इस एपिसोड पे, हमने बात की बहुत सारी मेमोरीज के बारे में, कौन सी मेमोरीज हैं जो हमारे साथ बचपन से हमारे साथ रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम भूलना चाहते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम चाह कर भी भूल नहीं पाते, और वो कंटिन्यू होती हैं। और वो ट्रेंड को कैप्चर किया है एक मूवी ने जिसका नाम है फ्रोजन, और वो आज से नहीं, आई थिंक पिछले 10-15 साल से वो चली आ रही है और अभी भी चल रही है, और उसका थर्ड एपिसोड या थर्ड सीरीज में जो है वो आने वाली है इंस्टॉलमेंट। और पीयू आज मेरे साथ है, और पीयू ने मेरे साथ और आप सबके साथ शेयर किया है उसकी यू नो थिंकिंग अराउंड पेरेंटिंग। एक्चुअली नाउ शी नोज व्हाट इट टेक्स टू बी अ पेरेंट टू हर, एंड नाउ दैट शी अंडरस्टैंड दैट शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबी सिस्टर, हाउ डज इट फील टू बी अ पेरेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स वी फेस एज पेरेंट्स। बट हैविंग सेड दैट, इट्स अ जॉय टू बी पेरेंट्स, एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स जो सुन रहे होंगे वो इससे इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि ऑल्दो इट्स टफ टू रेज किड्स बट इट्स ऑल्सो अ वेरी फुलफिलिंग जॉब इफ आई मे से सो। तो पीहू, फ्रोजन के बारे में तो हमने बात की है, और फ्रोजन 1 और फ्रोजन 2 देख ली है, फ्रोजन 3 आप कह रहे हो आने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि हॉलीडेज चल रही है, हॉलीडेज का सीजन है, और कैनबरा में अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में फ्लोरियाड होता है, स्प्रिंग चल रहा है और समर आने वाला है, और आई थिंक आज 1 अक्टूबर है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आज शायद टाइम क्लॉक वापस जाएगा, या आई थिंक 1st संडे को जाता है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई मे कम बैक टू यू एंड टेल यू, प्रॉबली यू ऑलरेडी नो कि कब टाइम जो है क्लॉक में ज्यादा हो जाता है, कब क्लॉक में कम हो जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं फ्रोजन के बारे में, और एक ऐसा फ्रोजन का ऑन स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है जो पीहू और वियोना, और जैसे कि इतने सारे सालों में मैं उनके साथ रहा हूं तो मैं भी जा रहा हूं देखने के लिए थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, उसके बारे में पीहू लोगों के साथ शेयर करो, क्या है वो परफॉर्मेंस, क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है और क्या स्पेशल है उसके अंदर।
1: तो ऑब्वियसली फ्रोजन इतना पॉपुलर हो गया सब बच्चे में, कभी कभी एडल्ट्स में भी, तो उसमें ब्रॉडवे म्यूजिकल बना रहे हैं, और वो क्वीन बी एन को आ रहा है,
0: क्वीन बी एन में आ रहा है। मैं साथ साथ में हिंदी भी करेक्ट करता हूँ, क्योंकि बच्चे, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू हैव फाउंड दैट स्ट्रगल बच्चों को लैंग्वेज सिखाना, बट पी यू ऑब्वियसली नोज हाउ टू रीड एंड राइट, बट बीच बीच में हम उसको करेक्ट करते रहते हैं। तो क्वीन बी एन में आ रहा है,
1: तो डिज्नी फ्रोजन द ब्रॉडवे म्यूजिकल क्वीन बी एन में आ रहा है, और वो न्यूयॉर्क से शुरू हुआ है और फाइनली अभी इधर ऑस्ट्रेलिया में आया है, 15 सितंबर टू 11 अक्टूबर में चल रहा है, और द क्यू में आ रहा है। तो इस ऑब्वियसली अभी इतना फेमस मूवी हो गया, तो फिर उनको थिएट्रिकल परफॉर्मेंस भी करना था, तो इसमें म्यूजिकल मतलब और गाने डाल दिया, और ऑब्वियसली जो ऑलरेडी गाने हैं वो भी ऑलरेडी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं गाने।
0: हाँ, और वो ये जो थिएट्रिकल हो रहा है, जो न्यूयॉर्क से स्टार्ट हुआ, तुमने बोला यूएस से, अमेरिका से स्टार्ट हुआ, और अब क्वीन बी एन में द क्यू, जो आई थिंक क्वीन बी एन आर्ट सेंटर है शायद, उसके अंदर हो रहा है ये, और 15 अक्टूबर तक है, 11 अक्टूबर तक है, 11 अक्टूबर तक, ऑब्वियसली हाँ 11 अक्टूबर जब फ्लोरियड भी खत्म हो जाएगा, और जैसे कि ऑब्वियसली इसके अंदर गाने तो होंगे ही, वो सारे जो गाने हैं, और एल्सा और आना भी होगी, और व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, यू नो इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम?
1: वेल, मैं ये मेरा पहले लाइक मूवी परफॉर्मेंस है, मैं पहले गई हूँ अबाउट लाइक अ परफॉर्मेंस अबाउट अ बुक, बट ये पहले मेरा डिज्नी फ्रोजन प्रिंसेस वाला परफॉर्मेंस है इन लाइक गोइंग देयर। तो अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ दे ट्रांसफॉर्म्ड what was on a screen into real life humans dressed up, lots of props, and how they put it together, how is it actually as well made, and costumes are good as the movie. So I'm looking forward to seeing how the actors portray the real life characters from the movie, and yeah, it's really exciting to see that.
0: तो अब ये एपिसोड के हम एंड में अब एपिसोड के हम एंड में आ गए हैं, और अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि ये ब्रॉडवे म्यूजिकल में एल्सा और आना के अलावा कोई एक कैरेक्टर जो तुम परफॉर्म करना चाहो, वो कैरेक्टर कौन सा होगा?
1: सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो है, अगर मैं कोई परफॉर्म, मतलब कोई और सपोर्टिंग कैरेक्टर परफॉर्म करूंगी, तो फिर मैं ओलाफ द स्नोमैन को परफॉर्म
0: करूंगी.
1: वो ही इज द कॉमेडी रिलीफ ऑफ द मूवी. वो ही इज काइंड हार्टेड, ही इज फनी जनरली. मतलब उसको ऐसे डाल दिया, सो इन द मिडल इन सम सैड सीन्स ही मेक्स यू हैप्पी, एंड ही इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी कैरेक्टर्स.
0: आई थिंक देयर यू गो पीहू. आई थिंक बाय चूजिंग ओलाफ यू आल्सो बेसिकली मेड अस अवेयर ऑफ वन मोर पावर दैट ऑल ऑफ अस हैव. Is the power of compassion, power of spreading happiness and joy, and that all of us have, and we should exercise it more often. That make people more comfortable around you and make them smile. And you know, this is one power that you should grow every day. And if you have it, recognize it and just keep going at it. आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड डिफरेंट वे में पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज टेल मी, और मुझे बताइए कि ऐसे पीहू और मेरे सेशंस अगर आपको पसंद है तो वी कैन पिक अप लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड वी कैन डिस्कस देम ऑन एसीटी देसी, एंड वी कैन ब्रिंग देम टू यू, यू नो, नॉट जस्ट इन ऑडियो बट इन विजुअल फॉर्मैट इफ यू लाइक देम. तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट.
1: Yeah.